मैं खड़ेरी धूर बनकर भुर्र उठू। तब तू मोरलाक पानी बनकर बरसत। एक घची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुहिन बाप ना का उड़ा का फिर से मैं इनसे दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बन कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसरे से दूर रख पे कर कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी अपराह्न 5 बजे हालखबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यो हालखबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज अनलाइन www.radiolumbini.org विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हालखबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। आज हरितालिका तीज अन्तर्गत दर खाने दिन गांव शहर में तीज को रौनक बढ़्दो। भोटेपछी बाढ़ी हिम पहिरो का कारण आएको तथ्य सहित सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक। हिम पहिरो खस्दा 5.2 मैग्नीच्यूड बराबर को भूकंपीय ऊर्जा समेत रेकर्ड। मलेसिया में रोजगारी में सीमित मैन पावर कंपनी छनौट पछि को विवाद थप पेचिलो। कूटनीतिक पहल भइरहेको सरकार को भनाई। भोटेपछी बाढ़ी प्रभावित परिवार स्थायी आवास नभएसम्म आवास भाड़ा तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय। एमसीसी अन्तर्गत 18 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न। शिलान्यास भएको 9 महिना भित्रै निर्माण कार्य सकियो। कपिलवस्तुको बाढगंगा नदीमा फसेका 12 जनाको उद्धार, एकजना बेपत्ता। मुस्ताङ भन्सारमा राजस्व संकलन वृद्धि, 15 दिनमै 1.78 अर्ब रूपियाँ राजस्व संकलन। र पहिलो संस्करणको एनबीएल उपाधि अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले जित्यो।

0: ड्रम बक्स प्लास्टिक का कुर्सी तथा होम डेकर का संपूर्ण सामान सुपथ मूल्य में ग्यारेन्टी का साथ पाइन नया राजी स्टोर तिलोतमा 8 करैया 4 नंबर रूपंदेही प्रोप्राइटर राजेन्द्र था गोमा कुमारी पांडे था मोबाइल 98470-77003 98470-66155 र 98470-16539 हमी कहाँ पुरानो दराज पनि मर्मत गरिन्छ।
1: यति बेला साँझको

0: लन्डन इन्टरनेशनल नेपाल र अकोराब सीआईएन।
1: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।

0: बाबू लिस्ट नहीं आई सको बाबू तुम्हें भूलान सदर उठे बैंला लीन जान पर्व
1: मान तो जानी भोली घास खान भैंसी तीन दिन भैंस घास काटे सको बाटो नहीं
0: घास
2: नगर आई बस बुढ़ी।